0: The Lunch Break with Vosh and Sukin.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम हवा हवा।